0: जल्दी हम लोग
1: लेट्स गो 6.9 इंच को शानदार डिस्प्ले एआई पावर्ड कैमरा 2 वर्ष को वारंटी सहित रेडमी A7 मा 5200 mAh तथा रेडमी A7 प्रो मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार
2: तपाई रेडियो बिहानी 97.6 MHz सुन्दै हुनुहुन्छ।

0: नया नेपाल को नया रेडियो
1: रेडियो बिहानी
2: 97.6 मेगाहर्ट्ज। समय को आवाज।

0: 6.9 को शानदार डिस्प्ले AI पावर्ड कैमरा 2 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।
1: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला बेलुकीको 8 बज्यो।

इंदिरा मोबाइल सेंटर धादिंग बेसीमा ऑफर है ऑफर। इंदिरा मोबाइल सेंटर यही जेठ 7 गते को दिन नया डेकोरेशन का साथ ग्रैंड ओपनिंग हुँदै छ। इस ग्रैंड ओपनिंग को दिन में संपूर्ण सामान को खरीद में 30 देखि 50% सम्म छूट दिइने छ।